0: चोट लगे है मन को, निशान लगे है तन को, लेकिन डटे रहेंगे, दुनिया को उठ उठ के दिखाएंगे, अब ये भी लड़ सकते हैं और वापस आ सकते हैं।
1: गुड डे चेन्नई, वेलकम टू एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8 एफएम। बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्कि खोखलन रिसेंटली रिवील्ड दैट शी वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड, which brought the issue of child sexual abuse, a growing but underreported horrible truth, to the forefront yet again. Statistics suggest that nearly 53% of children in our country are victims of sexual abuse.

0: Namaste, Chennai. You're listening to 107.8 FM, our radio, our community, our pride. हम आज की शुरुआत एक प्रार्थना के साथ करेंगे.
1: गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः.
0: भी आप सुनने जा रहे हैं एक प्यारा सा भाषण जो आपको सुनाएगी जया.
2: मैंने सुना था समय व्यक्ति को बदल देता है, मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है. समय किसी को नहीं बदल सकता. जैसे पुराने समय में नर नारी को अपने नीचे समझता था, वैसे आज भी नर है जो नारी को अपने से छोटा समझते हैं. नारी का सम्मान तो दूर की बात, उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं. यह तो रही नर की बात, मगर क्या एक नारी दूसरी नारी का सम्मान करती है? क्या एक नारी दूसरी नारी की रक्षा कर पाती है? नहीं. हमें कहना आता है, करना कुछ नहीं आता. हम बस शिकायत करती रहती है, अपने आप के लिए खड़ी नहीं रह सकती है. हमें तो बस गपशप करनी आती है, एक दूसरे की बुरी बातें करनी आती है. क्या कभी हमने एक नारी को समस्या में देखकर उसकी मदद की है? हाँ, कोई कोई करती है, मगर सब नहीं करती. हम सोचती हैं कि वह उसकी समस्या है, वह खुद देख लेगी. हम क्यों बीच में बोले? अगर कोई और नारी उसकी मदद करना चाहती है तो बाकी और नारियां तो उसे मना कर देती है, और फिर उस नारी के साथ कुछ होता है, मगर फिर भी यहीं पे नारी को ही गलत माना जाता है, उसे कोसा जाता है. कुछ ही दिनों पहले की बात है, मेरी एक मित्र ने मुझे एक बात कही जिसे मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक नारी दूसरी नारी की सम्मान नहीं करती और हम नर को गलत बोलते हैं. उसने मुझसे कहा कि वह अपने पाठशाला से घर आ रही थी, तभी उसने कुछ लड़कों को एक लड़की को छेड़ते हुए देखा. उन लड़कों ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया, वह मदद के लिए चिल्लाई, बट कोई उसकी मदद नहीं कर पाया. उसकी मदद करने के बजाय उसे कोस रहे थे. वहां कई आंखें थी, वे कह रही थी एक दूसरे को, देखो कैसे कपड़े पहनकर आ रही है. उसके माँ बाप ने ऐसा ही संस्कार दिया है. क्यों हमेशा एक लड़की को ही अपना शरीर से झुकाना पड़ता है? यहाँ पर उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, मगर फिर भी उसे गलत समझा गया. क्यों? क्या हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है? क्यों हमेशा हमें ही सताया जाता है, हमें त्यागना पड़ता है? हमारे भी कुछ सपने हैं. क्यों हमेशा लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है? घर पर, बाहर, काम की जगह पर, हर जगह. वह छोटे कपड़े पहने तो वह चरित्रहीन है. अगर उसके कई लड़के मित्र हैं तो वह चरित्रहीन है. क्यों? क्यों हमेशा लड़की को ही गलत समझा जाता है? हाँ, मैं एक लड़की ही हूँ, मुझे यह सब रोज सहना पड़ता है. मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है. मैं नहीं, वास्तव में हम सब लड़कियां यही चाहती है कि सब लोग हमारा सम्मान करें, हमारी रक्षा करें, हमें समझने की कोशिश करें, हमें अपने सपने पूरे करने दें. अंत में यही कहना चाहूंगी, बेटी है वो आपकी, बेटे से कम नहीं, गर्व है वो आपका, शर्म नहीं, प्यार करो उसे, मारो नहीं, बेटी है वो आपकी, बेटे से कम नहीं.
0: अभी आपने सुना एक प्यारी सी स्पीच, अभी आप सुनेंगे थोड़ी तड़कती फड़कती सी शायरी मुस्कान की तरफ से.
3: ये डिग्री भी ले लो, ये नौकरी भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरा वीजा, मगर मुझको लौटा दो वो कॉलेज का कैंटीन, वो ठंडा पानी और वो तीखा समोसा, वो लेक्चर में दोस्तों की प्रॉक्सी लगाना तो वो सर को छेड़ना, वो रोज एरोप्लेन उड़ाना, वो एग्जाम की आखिरी दिन थिएटर में जाना, वो भोले से फ्रेशर्स को हमेशा सताना, विदाउट एनी रीजन कॉमन ऑफिस जाना, टेस्ट के वक्त टेबल के नीचे किताबों को रखना, वो दोस्तों से कैंटीन में प्यारी सी बातें करना, वो गैदरिंग के दिन लड़ना झगड़ना, वो लड़कियों को यूं ही हमेशा अखड़ना, भूले ना भूल सकता है कोई, वो कॉलेज, वो बातें, वो शेयरिंग, वो जवानी. काश हम फिर से दोहरा सकते ये कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी. तो ये तो रही हरे की यादों का ठेर, अभी कुछ मस्ती मजाक भी. तो अर्ज क्या है, LIC वाले का भी गजब का कहना है, LIC वाले का भी गजब कहना है, लोगों की बीवियों के पास घंटों बैठ के हस्बैंड को मारने के फायदे बताते हैं. और एक और, ताजमहल ना किसी के लिए अजूबा है तो किसी के लिए प्यार की निशानी, हमारे लिए तो बकवास है क्योंकि रोज बदलती हमारी मुमताज है। तो अभी लास्ट एक अलविदा कहते हुए, लाइफ इज अ जर्नी, हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, खो दो तो यादें और जी लो तो जिंदगी है।
0: अभी आपने सुनी प्यारी और नटकच्ची शायरी, अभी आप सुनेंगे थोड़े से खाने बनाने के तरीके भाविका की तरफ से।
4: अगर आपको झटपट से कुछ स्नैक्स बनाना हो तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। पहली रेसिपी है चटपटी फ्रैंकीज, इससे 4 जन खा सकते हैं। प्रेपरेशन के लिए टाइम है 7 मिनट और पकाने का समय बस 2 मिनट। सामग्री 4 रोटी, 2 उबले हुए आलू या 1 कच्चा केला, 1/2 कप ग्रेटेड पनीर, 1 गाजर पीसा हुआ, 1 चीज क्यूब पीसा हुआ, 2 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस, 1 टमाटर लंबा कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च लंबा कटा हुआ और नमक स्वाद अनुसार। अगर आपके पास समय की कमी है और आपको जल्दी से खाना बनाना चाहते हैं तो इस चटपटी फ्रैंकी को बनाइए। यह 4 जन खा सकते हैं। बनाने का समय बस 9 मिनट। सामग्री 4 चपाती, 2 उबले हुए आलू या फिर 1 कच्चा केला, 1/2 कप पीसा हुआ पनीर, 1 गाजर पीसा हुआ, 1 चीज पीसा हुआ, 2 छोटे चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस, 1 टमाटर लंबा कटा हुआ, 1 कैप्सिकम लंबा कटा हुआ और नमक स्वाद अनुसार। बनाने का तरीका, पील एंड ग्रेट उबला हुआ आलू या फिर कच्चा केला और एक बाउल में लीजिए। उसमें पनीर, गाजर, चीज और 1/2 चम्मच चाट मसाला मिलाइए। उसके बाद नींबू का रस और नमक मिलाइए। अब जो मिक्सचर बनाया हुआ है उसे 4 भागों में बांटिए और लंबे लंबे चपाती के साइज में बेलिए। अब चपाती को गरम करके एक सर्विंग प्लेट पे रखिए। अब जो रोल किया हुआ है उसे चपाती पे लगाइए और उसके ऊपर थोड़े से शिमला मिर्च और टमाटर के लंबी कटी हुई स्ट्रिप्स को लगाइए और चाट मसाला को छिड़किए। अब चपाती को रोल करके सर्व कीजिए। यही प्रोसेस दूसरी 3 चपाती के लिए भी फॉलो कीजिए।
0: अभी आपने सुने कुछ घरेलू तरीके खाने बनाने के, अभी आप सुनेंगे कुछ घरेलू नुस्खे अपने त्वचा को अच्छा रखने के लिए संध्या की तरफ से।
2: बालों की समस्या सफेद होना एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके लिए कई लोग कलर इस्तेमाल करते हैं, पर कलर बाल को जड़े से कमजोर कर देता है। कई ऐसे घरेलू नुस्खे उपाय हैं जो सफेद होते बाल को दूर कर सकता है। छोटा सा दिखने वाला आंवला ना केवल आपकी सेहत के लिए गुणकारी है, बल्कि आप इसे मेहंदी में मिलाकर इसे घोल से बाल को कंडीशनर कर सकते हैं। नहीं तो आप आंवले को बारीक काटकर गरम तेल में मिलाकर आप अपने बाल में लगा सकते हैं। आप अपने चेहरे के दाग धब्बे से भी परेशान हो गए होंगे। इसे छुटकारा पाने के लिए आप टमाटर को पीसकर चेहरे पर इसका लेप लगाने से त्वचा की कांति और चमक 2 गुना बढ़ सकते हैं। इसे आपके चेहरे के दाग धब्बे और छाइयां दूर करने में मदद मिलती है।
0: अभी आपने सुने कुछ घरेलू नुस्खे, आप इसको इस्तेमाल कीजिए अपनी जिंदगी में और पाइए स्वच्छ और अच्छी त्वचा। अभी आप सुनेंगे एक कविता, प्यारी सी नहीं बल्कि थोड़ी सी अलग सी कविता। उदिता सुनाएगी आपको आतंकवादियों के बारे में कविता।
5: मेरी ही मातृभूमि पर तूने मचाई खूब तबाही, तुझे तो हरा कर रहूंगा ये प्रण लेता है एक सिपाही। बहाए हैं मेरे लोगों के लहू के जो रेले, अब मैं भी देखता हूँ इससे आगे तेरा आतंक कैसे फैले। उन मजबूर विधवाओं की सुनी मांगे, उन लाचार माओं की चीखे, जिनके पति बेटे कहकर गए थे शाम से पहले ही लौट आएंगे। उन लाखों हिंदुस्तानियों के सपने अनाथ करना कोई फक्र की बात नहीं, बेबस बेसहारे बच्चों को लहू के आंसू रुलाने में कोई वीरता नहीं। दिखते तो तुम वैसे ही इंसान हो जैसा हूँ मैं, जिस इलाही ने तुझे बनाया उसी ईश्वर ने बनाया मुझे। फिर क्यों है तेरे तन में भेड़ियों जैसा खून दौड़ता, क्यों है मन में आतंक का विष फैलता। सोच लो, आज भी आपसी जज्बात बदल सकते हैं। हिंदुस्तानी सिपाही है हम, दुश्मनी में भी शराफत रखते हैं। दिलदार अगर कोई बनके आए तो हम तो दिलदार है ही यहाँ, लेकिन अगर दुश्मनी ठहरी तो हम भी तैयार है यहाँ।
0: अभी आपने सुनी एक अलग सी कविता, अभी आपको मानसी सुनाएगी आश्चर्यजनक तथ्य।
6: जिंदगी में ये तीन चीजें हमेशा संजो कर रखना, जरूरत पर बहुत काम आएगी। ज्ञान जहाँ मिले वहाँ से उठा लो, भरोसा हर किसी का जीते रहो, आगे फायदा होगा। दोस्त बनाते रहो, क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि किस समय किस कंधे की जरूरत पड़ जाए। गलतफहमी का एक फल इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे सो लम्हों का एक क्षण में भुला देता है। आहिस्ता चल ये जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी है, कुछ के दर्द मिटाने बाकी है, कुछ फर्ज निभाने बाकी है। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा गया, अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता है, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। सब कहते हैं अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, पर सच तो यह है कि दो लोगों के बिना कोई आता नहीं और चार लोगों के बिना कोई जाता नहीं।
0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी आप सुनेंगे थोड़े मनोरंजन। अभी आपको जया सुनाएगी भाई की पिक्चर के रिव्यू।
2: भाईजान की मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, उसके बारे में तो सबने सुना होगा।
7: यह मूवी के कुछ अच्छे लम्हे मैं आपसे बताना चाहती हूँ। यह मूवी कैसी थी वह भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। यह मूवी के निर्माता सलमान खान, निर्देशक कबीर खान, अन्य सितारे सलमान खान, करीना कपूर, हर्षली मल्होत्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यह सीधी साफ कहानी है, पवन कुमार चतुर्वेदी भोला है इसमें, ईमानदार है, दुनियादारी की पढ़ाई में कच्चा है मगर दिल का सच्चा है। वह हनुमान जी का इतना बड़ा भक्त है कि जब सब उसे बजरंगी बुलाते हैं तो उसे दिल में बहुत खुशी होती है। जब पाकिस्तान से आई एक माँ की 6 साल की बच्ची भारत में छूट जाती है तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि कोई एक इंसान उसे हिंदुस्तान में मिल ही जाएगा। बच्ची को नेक बजरंगी मिलता है, बच्ची गूंगी है, बात नहीं कर सकती, उसे उसका देश पाकिस्तान है। लेकिन जब पता चलता है तो बजरंगी उसे घर पहुंचाने की ठान लेता है, लेकिन काम आसान नहीं है क्योंकि पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है। बजरंगी सीमा पर बनी एक सुरंग के रास्ते पाकिस्तान पहुंचता है। मिशन पूरा करने में उसे एक पाकिस्तानी पत्रकार की मदद मिलती है। इस बीच रसिका के साथ बजरंगी की लव स्टोरी भी चलती है। फिल्म कॉमेडी नहीं है लेकिन इसका अंदाज कॉमिक है। बजरंगी भाईजान एक मानवीय फिल्म है, उसका संदेश स्पष्ट है, बुनावट में पेच नहीं है। सलमान से जैसी उम्मीद करते हैं उन्होंने वैसा काम किया है। ननी बच्ची के लिए बड़े जोखिम उठाए हैं, वह उसके मामा तक बन गए। मारपीट करने वाले एक्शन हीरो के दर्जे से नीचे आकर पिटते हुए दिखाई दिए। कुल मिलाकर सब कुछ ऐसा है कि अतीत और वर्तमान के पन्नों को आप भूल जाएं। जो सामने है सिर्फ उसे देखें। अगर आप ऐसे देखेंगे तो फिल्म दिल में उतरेगी, हर्षली की प्यारी मुस्कान जी चुरा लेगी, करीना की बड़ी खूबसूरत आंखें और गोल गोरे गाल धड़कन तेज कर देंगे। नवाजुद्दीन का अंदाज मन मोह लेगा। वैसे इन बातों के बीच फिल्म की लंबाई कहीं खटकती नहीं। बीते सप्ताह की बाहुबली में 2 घंटे 40 मिनट जहां पंख लगकर उड़ जाते हैं, वही बजरंगबली में इन्हीं इतना ही वक्त हौले हौले चला जाता है। कुछ गाने गैर जरूरी है तो कुछ दृश्य खींचे हुए हैं, लेकिन बॉलीवुड में मान्यता है कि दर्शक सितारे को देखने आते हैं, कहानी नहीं। अतः आप सलमान के फैन हैं और उनकी फिल्म छवि को जीवन में फॉलो करते हैं, तो यह फिल्म आप किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं समझे। अच्छे रास्ते पर ले जाएगी, अच्छा इंसान बनाने को प्रेरित करेगी। निसंदेह यह फिल्म सलमान की बॉडीगार्ड, जय हो और किक जैसी फिल्मों से बेहतर है, जिसका श्रेय निर्देशक कबीर खान को जाता है। उसके बावजूद यह बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि बजरंगी भाईजान सलमान के बीइंग ह्यूमन ब्रांड सिनेमा की एक नई कड़ी है, जिसके रेंज सिनेमा पार तक है। उम्मीद करें कि इसके बाद उनके ठप्पे वाले कपड़े पाकिस्तान में खूब अच्छे बिकेंगे, पाकिस्तानी करेंसी में उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। बिजनेस के बीच सरदर नहीं आती, इसलिए अगर हीरो कपड़े के साथ सौदा और भाईचारे का संदेश भी बेच ले तो इन कपड़ों पर लगा परफ्यूम माना जाएगा। इस परफ्यूम को पड़ोसी के धोखे और बारूद की गंध कम से कम 3 घंटे के लिए तो मिठी जाती है। फिर भले ही आप जप करते रहे, संकट कटे सब पीरा, जो सुमीर हनुमत बलबीरा। थैंक यू।
0: हमारा सफर आज यहीं तक था, पर आप आगे सुनते रहिए 107.8 FM। धन्यवाद हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं थी आपकी आरजे रितिका, आगे मिलते रहेंगे आपसे। अभी के लिए अलविदा, नमस्ते और एंजॉय लाइफ।